0: දැනෙන තැන ඔහොමම නවතින්න. All time beats with
1: Jami.
2: जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं.
0: साथी दिनवन एक ही दांग हतरा देने का. All time beats with Jami.

सीरियल की। यहां पर अधा सुन शक्ति शब्द तरंगेत मुसुरी बहु ऐत सिसिन ससत्यान वेतित विकारशील पीड़ित ही लयान्वित नादय स्नायु पद्धतिय पिनवी मतित रुधिरे पवित्रतात्वयतित मानसिक संहिंदियाव एतवी मतित हेतुवन बैवें मानसिक में शारीरिक सुवेद धनवती सलकी जय पीड़ित सियल रोगयांटित यक्ष भयटित ग्रह दोष वलटित यहापत प्रतिफल अतकर देन बाव पुरातने सित पवतेन जन विश्वासयै जय पीड़ित श्रवणय करन ओबटते